सुन रहे हैं रेडियो नायरा बन रिवाना नाइट्स एंड आरटीपी रिसर्च ट्रायंगल पार्क के अलग अलग शहरों जैसे कैरी, एपेक्स, मॉरिसविल और दरम में रहने वाले भारतीय परिवारों ने आज सुबह शुभ मुहूर्त पे अपने घरों में इको फ्रेंडली गणपति बापा की स्थापना की है। वीकेंड दैट इज 18-20 सितंबर के दौरान विभिन्न सोसाइटीज में सामूहिक आरती और महाप्रसाद के बड़े आयोजन जो है वो निर्धारित है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ही मजा है यार, वातावरण जो है भक्तिमय हो गया है, इतनी सारी एनर्जी है कि बहुत एनर्जेटिक लग रहा है, बहुत एनर्जेटिक लग रहा है। सो इट्स लाइक नथिंग इज लाइक दैट। और मैं यही कह रहा था कि हम जब छोटे थे 90s के किड इंडिया में रहते थे, उसके बाद हम झांकियां देखने जाते थे अपने परिवारों के साथ, बहुत मज़ा आता था यार। वो क्या मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ, इतना मज़ा आता था। इन्जॉय कीजिएगा अगला ही गाना।

रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड बहुत अच्छी अच्छी मूर्ति है बापा की आज देखने मिल रही है, बाल गणेश जिनमें बहुत सुंदर लगते हैं और बहुत बहुत तरह तरह की मूर्तियाँ, क्या मतलब मैं बापा का मनमोहक रूप देख के मन ऐसे ना इतना खुश हो जाता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। तो आज के मौसम के बारे में अगर बात करें तो आज मौसम काफ़ी गर्म और उमस भरा हुआ है, लेकिन एनर्जी जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। बोला गणपति बाप्पा मोरिया। अधिकतम तापमान जो है वो 91 फ़ारेनहाइट मतलब 33 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है। आने वाले दिनों का हाल यह है कि मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आज रात से तापमान में गिरावट आएगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और मंगलवार से ठंडी हवाएं जो है वो चलने लगेंगी और मौसम जो है वो सुहावना बनते जाएगा।

सुन के तसल्ली मिल गई कि मौसम जो है वो जल्द ही सुहावना होने वाला है, और ऐसे सुहावने मौसम में गणपति बापा का फेस्टिवल, नथिंग इज लाइक दैट। तो मैं यही कह रहा था कि रैली और चैपल हिल क्षेत्र में एक बड़ी घटना, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि विभिन्न स्थानों के होटल के बाहर 60 से अधिक गाड़ियों के शीशे तोड़कर चोरी की कोशिश की गई है, एंड अब तक कुछ ठोस पुरावे नहीं मिले हैं कि ऐसा क्यों हुआ है और क्यों होने जा रहा है। तो जैसे कुछ अपडेट मुझे आती है, डेफिनेटली आई विल लेट यू नो। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि सावधान रहे, सतर्क रहे, यही हम कर सकते हैं। और फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट गाड़ियों की सुरक्षा थोड़ी दिक्कत में लग रही है। फिलहाल कैसे चल रहा है आपका आज का दिन? बढ़िया तो चल ही रहा होगा। एंजॉय करते हैं अगला एक गाना, बने रहिएगा रेडियो नायरा पर।

रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, एंड मैं ये कह रहा था कि गणपति जी की आरती जो है, दासरामा चावा ठुपा है सदना, इट्स अ सदना नॉट सजना। बहुत सारे लोग सजना कहते हैं आरती में, तो ये सजना नहीं है, इट्स सदना है। मतलब दास रामा चा वाटपा है सदना, है ना। सो इट्स लाइक हम्बल सर्वेंट और डिवोटी ऑफ लॉर्ड रामा जो है, वूज नेम लिटरली मीन्स राम सर्वेंट, इज वेटिंग वॉचिंग द पाथ, एंड सदना मतलब होता है घर। तो ये ऐसा है कि लाइक अ डिवोटेड सर्वेंट ऑफ लॉर्ड रामा, आई एम वेटिंग फॉर यू इन माई होम, प्लीज प्रोटेक्ट अस इन अ टाइम ऑफ ट्रबल एंड सेव अस एट द एंड ऑफ आर लाइव्स। ये जो है ये इसका मीनिंग होता है। सो इट्स सदना नॉट सजना। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स।

आज रैली टेरम और आरटीपी क्षेत्र से आज दैट इज 14 सितंबर 2026 से बिल्कुल ताज़ा और प्रमुख खबरें कुछ इस प्रकार है। सोमवार में रिपोर्ट के मुताबिक एनसी हाईवे 55 और WADE ड्राइव के पास पानी की मुख्य पाइपलाइन जो है वाटर लाइन जो है वो फट गई है। इसके कारण सुबह 3 बजे से ही पूरे कैरी टाउन के कई हिस्सों में पानी का प्रेशर बेहद कम हो गया है और सप्लाई पूरी तरह से बंद है। रिपेयरिंग का काम जो है वो जारी है, इसलिए आप अगर इस वे से जा रहे हैं तो आपने बहुत अच्छी तरह से सोचना चाहिए, कुछ अलग वेज को भी फाइंड आउट करना चाहिए एंड फिगर आउट करना चाहिए। दैट्स व्हाई टोल्ड यू कि घर से बाहर निकलते वक्त आपको अच्छे से एक बार चेक कर लेना है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्माता नाइट्स एंड गणेश जी का आगमन आप सेलिब्रेट कर रहे हैं रेडियो नायरा के साथ, पक्का देसी पक्का लोकल।

का नाम सुन रहे हैं रेडियो नायरा पंडिरवाना नाइट्स एंड लोकल कैरी क्षेत्र के युवाओं और टीन एजर्स ने मिलकर एक बहुत ही शानदार पहल शुरू की है। ये बच्चे मिलकर अपने इलाकों के बुजुर्ग को ऑनलाइन और फोन फ्रॉड से बचाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। मैं कहता हूँ ना कि हर कंट्री का भविष्य जो है वो निर्धारित करती है उनकी युवा पीढ़ी। तो जो टीन एजर्स कैरी में है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। बच्चों की इस समझदारी और कोशिश की वजह से कई बुजुर्गों की जिंदगी भर की कमाई स्कैमर्स के हाथों में जाने से बच गई है। लोकल लोग युवाओं के इस सामाजिक काम की जमकर तारीफ कर रहे हैं, और अच्छे कामों की तारीफ करनी ही चाहिए, अच्छे कामों के लिए लोगों को मोटिवेट करना ही चाहिए। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पंडिरवाना नाइट्स, बोला गणपति बाप्पा मोरया।

सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वरा नाइट्स एंड पर्यावरण के लिए बड़ी जीत, क्या बात है। पानी होगा बिल्कुल साफ। नॉर्थ कैरोलिना में पर्यावरण को लेकर एक बहुत ही बेहतरीन फैसला हुआ है। पानी को प्रदूषित करने वाले हानिकारक रसायनों PFAS को पूरी तरह से साफ करने के लिए लगभग 40.45 करोड़ डॉलर का एक बड़ा फंड मंजूर हुआ है। आने वाले दिनों में इसका सीधा फायदा RTP और आसपास के सभी निवासियों को मिलेगा, जिससे क्षेत्र में पीने का पानी बहुत ज़्यादा सुरक्षित और प्योर होने वाला है। ये बहुत अच्छी बात है और मैं हमेशा कहता हूँ कि पर्यावरण की टेक केयर करना ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर पर्यावरण की टेक केयर करोगे तो पर्यावरण आपकी टेक केयर करेगा। बने रहिएगा रेडियो धारा पर।

एंड आज पॉइंट अब सिर्फ काम नहीं, सुकून से रहने वाली जगह भी। नया बदलाव, जी हाँ, रिसर्च ट्रायंगल पार्क को अब केवल एक कॉर्पोरेट या बिजनेस हब में न रखकर इसे वर्क लाइव प्ले मॉडल में बदला जा रहा है। फायदा इससे क्या होने वाला है कि नए आवासीय नियमों को मंजूरी मिल गई है, जिसका मतलब है कि अब यहाँ सुंदर नए घर, शानदार रेस्टोरेंट्स और वॉकिंग ट्रेल्स और मनोरंजन के साधन तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ काम करने वाले लोगों को अब ट्रैफिक में बिना फंसे ऑफिस के पास ही बेहतरीन लाइफ स्टाइल जो है वो मिलने वाली है। एंड 3.0 तो 3.0 है, ये बहुत ज़्यादा एडवांस रूप है, मतलब आपको काम के साथ साथ मिलने वाला है एंटरटेनमेंट का माध्यम। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पंडित वना, नाइट 7 से 10 में रहता हूँ आपके साथ। एंजॉय करते हैं, अगला ही गाना, बने रहिएगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स। जैसे ही मैंने शुरुआत में कहा कि मौसम का शानदार तोहफा गणपति बापा बहुत अच्छा मौसम लेके आ रहे हैं, तो गर्मी से राहत मिलने वाली है। पिछले कुछ दिनों से उमस और भारी गर्मी के बाद आखिरकार प्रकृति ने, बापा ने राहत दी है। मौसम विभाग के अनुसार आज रात से ठंडी और बहुत बड़ी हवाएं चलना शुरू हो जाएगी, जिससे तापमान काफ़ी गिर जाएगा। कल से आप शाम को बाहर टहलने या आउटडोर एक्टिविटीज़ का खुलकर मज़ा ले सकते हैं, और निर्वाणा नाइट्स का मज़ा तो आप ले ही रहे हो। मतलब मौसम भी अच्छा, गणेश जी भी है, निर्वाणा नाइट्स हमारा शो भी चल रहा है, अच्छे अच्छे गाने भी प्ले कर रहा हूँ, अच्छी अच्छी बातें भी प्ले कर रहा हूँ, और क्या चाहिए। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, बोला गणपति बापा मोरया।

Yeah, भाई तेरा बस लगता गाने, हर दुनिया देती ताने, बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने, शौकीन चाहिए टिकटे, चाहे होने देना शौक को, ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो, घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते, भर डाला ओटू इनके फेस बनते, इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते, ए

ही बताओ, आपको मजा तो आ रहा है। एंड मोदक मेरा सबसे पसंदीदा पदार्थ है, जो कि मैं हमेशा, मतलब हमेशा अगर आप मुझे मोदक खिलाओगे तो मैं रोज मोदक खा सकता हूँ, इतना मेरा फेवरेट है। उकड़ी से मोदक जो पदार्थ है, कोकण महाराष्ट्र में ये खासकर बनाया जाता है, तो वो इतना प्यारा, इतना सुंदर लगता है ना, कि मैं जब इंडिया में कोकण जाता हूँ तो हमेशा उकड़ी के मोदक खाना प्रीफर करता हूँ। बीच और अच्छे बीच के किनारे, मतलब वही समंदर के किनारे पर बैठ के जो मोदक खाने का मज़ा है, और गणपति फेस्टिवल में तरह तरह के प्रसाद खाने का मज़ा जो है, नथिंग इज लाइक दैट। आप कितने भी फाइव स्टार रेस्टोरेंट में जाओ ना, वैसा टेस्ट थोड़ी मिलने वाला है। एंजॉय करते हैं अगला एक गाना।

सादी सी हो आशिकी हो मुझे पता है तुम किस गली हो किस मोहल्ले जात की हो मुझे पता है तुम खुश नहीं हो दिखती तो आजाद भी हो पर दुनिया तो तुम्हीं से चलेगी मैं एक लड़का हूँ तुम मेरे बाद भी हो

आपने एंजॉय किया ये गाना, आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड गणपति जी गणेश जी का जब आगमन होता है तो जो गणपति डांस रहता है दत्तर तत्तर तत्तर तत्तर तत्तर तत्तर तत्तर तत्तर, वो गणपति डांस इतना एनर्जेटिक होता है कि आप कितना भी हिप हॉप कर लो, कितना भी ब्रेक डांस कर रहे हो, कुछ भी कर लो, लेकिन जो धतर तत्तर तत्तर धतर तत्तर तत्तर इसमें जो बीट है और जो मज़ा है और जो बापा के सामने थिरकने में थतर तत्तर तत्तर तत्तर जो मज़ा है ना, वो मज़ा तो कहीं पर है नहीं ऐसा मुझे लगता है। और आज ये नज़ारे तो डेफिनेटली देखने मिलने वाले हैं, देख रहे हैं, अब सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्मला नाइट 7 से 10 का ये टाइम अगेन आप लोगों के साथ बातें करते करते, और अब तो गणेश फेस्टिवल है, मज़ा ही आने वाला है। कल मिलता हूँ आपको रेडियो नायरा के निर्वाणा नाइट्स इस शो पर, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए एंड एक बार फिर से बोलते हैं गणपति बाप्पा मोरया।

0: सो हो।
1: नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर। सब कुछ नया, सिर्फ रेडियो नायरा पर।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 4 1490 एएम पक्का देसी पक्का लोकल।

साल नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

रेडियो सिटी पर सुनिए द हम्मा सॉन्ग, संग बाय जुबिन नौटियाल, शाशा तिरुपति, कंपोज्ड बाय एआर रहमान, रिक्रिएटेड बाय बादशाह एंड तनिष्क, एंड रिटन बाय महबूब।

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम एसडी 4 1490 एएम पक्का देसी पक्का लोकल।

0: हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब, मेरा नाम है नायाब मिधा एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो नायरा. एंड गेस व्हाट, आई एम ब्रिंगिंग माय शो राजकुमारी, माय पोइट्री स्टोरी टेलिंग शो राजकुमारी टू रैले दिस अक्टूबर 2nd. कैच मी लाइव एट द गार्नर परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर प्रेजेंटेड बाय ओहो प्रोडक्शंस. टिकट्स जल्दी जल्दी निकल रहे हैं तो ग्रैब योर्स टुडे. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव ऑलरेडी. सी यू देयर. Thank you so much. Jaldi milte hain. Kavitaon ke saath, kahaniyon ke saath, kisson ke saath.
1: Do you desire for contemporary and classic jewelry designs to fit every occasion? Khanna and Sons Jewelers has you covered for all your jewelry needs. We craft the purest 22 karat gold and 18 karat dazzling diamonds jewelry with top quality and finish. We offer best value in jewelry along with top craftsmanship and fair making charges. Gold buyback. Easy 12 months interest free financing available. Come see us for all your jewelry needs at Khanna and Sons Jewelers in Cary, North Carolina, or call us.
2: Shopping
1: at
2: for your next car? LeapCars.com puts everything in one place, so you can search, compare, and buy with confidence. Choose from thousands of new and used vehicles, backed by our trusted network of local dealerships with expert service, convenient locations, and flexible buying options. LeapCars.com makes the entire process simple. Start online and drive home with peace of mind.
3: आप सुन रहे हैं ना 101.9 FM, 99.9 FM, SD 4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 49 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा।
1: You're listening to WCMC FM Holly Springs 99.9 FM HD4 W270 DT Durham 101.9 FM WDUR Durham 14

हरमीत, तुझे देख के पता है क्या लगता था? कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा। कितना पोटेंशियल है तुझ में। क्या हो गया है? कुछ बन क्यों नहीं पाया तू?

0: मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: साल की शुरुआत सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स के साथ। ट्यून इन टू रेडियो नायरा 2025 की परफेक्ट शुरुआत।
1: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स।
2: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा,
1: एंजॉय फ्रेश सिजलिंग वेज एंड नॉन वेज स्टार्टर्स पेयर्ड परफेक्टली विद ओवन फ्रेश चूर चूर नान मेड विद लव एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स।
2: प्लानिंग योर बर्थडे, वेडिंग, ग्रेजुएशन पार्टी, कॉर्पोरेट गैदरिंग और फैमिली सेलिब्रेशन?
1: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
2: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
1: Whether it's dinner with family, chai with friends or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
3: Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. Pakka Desi, Pakka Loka.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोका।

0: We are delighted to bring our play.
1: Jaane Pehchaane
0: Anjaane. Can you be together, all of you?
2: Jaane Pehchaane Anjaane.
0: Dedicated superstars of this play are saying Jaane Pehchaane Anjaane, and our tour starts from 5th in Houston. Our friend Rajender of Star Promotion is bringing this play to various cities. A lot of cities are booked, and there are certain cities which are going to be still. And if you have any issue, if you have a problem, please look at the number. And call up and bring this play to your city. The play deals with togetherness and different generations. It's music by
3: Anu Malik.
4: And lots of laughter.
0: Lots of
4: emotions.
0: She also speaks in between. She is. Everybody, my name is Anupam Kher.
5: I'm Meghna Malik.
6: I'm Swarup Sampat.
7: Maya Sharma.
8: Shraddha Mandale.
9: Amin D'Souza.
10: Gajendra Ahire.
9: Writer director Gajendra Ahire.
11: I'm Vikas Rawat.
8: Yes.
0: And we are coming to America and to Canada. Rajender Ji, Jamado.
5: बेसब्री से इंतजार है आप लोगों से मिलने का.
10: जाने पहचाने
0: अपने अलग अलग भाषाओं के लोग आ रहे हैं. बच्चुस कोशुर कर्कशुर पटका
4: जरूर आओ. जो टिकट लाइन है मजा उसे.
5: राम राम जी. जल्दी से जल्दी मिलन आ रहे हैं थारे ते.
7: अम्मी सब एक साथ आई थी अमेरिका. आपने सबसे मिलेला
0: देखा. अलग अलग भात भात के और कोई किसी
10: नक्की आ सुंदर अनुभव. सुंदर सुंदर एक अनुभव घेऊन जा.
4: लवकर लवकर टिकट बुक करा
11: प्लीज. बन्नी जास्ती जना बन्नी एल्लारू बन रही.
0: अरे वाह. इंडिया विल बी सून इन यूएस एंड कनाडा विद द प्ले
2: जाने पहचाने अनजाने.
12: हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब. मेरा नाम है नायाब मिर्हा एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो नायरा. And guess what? I am bringing my show Rajkumari, my poetry storytelling show Rajkumari to Raleigh this October 2nd. Catch me live at the Garner Performing Arts Center, presented by Oho Productions. Tickets jaldi jaldi nikal rahe hain, so grab yours today. Thank you so much for all the love already. See you there. थैंक यू सो मच. जल्दी मिलते हैं कविताओं के साथ, कहानियों के साथ, किस्सों के साथ.
13: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM. पक्का देसी पक्का लोकल.

पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने, शौकीन है चाहिए टिकटे, चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते, पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो, घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते, भर डाला ओटू इनके फेस बनते, इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते, ए

आता माझी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए, कमर पे तेरी बटरफ्लाई, बॉडी तेरी मक्खन जैसे, खाने में बस तू बटर खाए। कम ऑन बेबी किकेट किकेट, काटू तेरी टिकेट टिकेट, खेलता नहीं क्रिकेट विकेट, पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 41490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
2: हरमीत, तुझे देख के पता है क्या लगता था? कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा। कितना पोटेंशियल है तुझ में? क्या हो गया है? कुछ बन क्यों नहीं पाया तू? What happened?

0: कि मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

Did you know Parveen Babi and Danny lived together for 4 years before their relationship took tragic turn? तो लिव इन का कंसेप्ट अभी नहीं आया है. हाँ, पहले से ये लोग कर रहे थे ऐसा. दिस इज बॉलीवुड ब्लिस विद मी भारती ऑन योर ट्यून फ्रिक्वेंसी नायरा. एंड यस, परवीन बाबी एंड डैनी वर अमंग बॉलीवुड मोस्ट स्टाइलिश एंड टॉक्ड अबाउट कपल्स ड्यूरिंग द 1970s. एट अ टाइम व्हेन लिव इन रिलेशनशिप वर रेयरली स्पोकन अबाउट पब्लिकली, द टू चोज टू बिल्ड अ लाइफ टुगेदर एंड रिपोर्टेडली लिव्ड अंडर द सेम रूफ फॉर नियरली 4 years. ऑल्दो दे इवेंचुअली डिसाइडेड टू पार्ट वेज, द ब्रेकअप वॉज रिपोर्टेडली अमिकेबल एंड दे कंटिन्यू टू मेंटेन अ कॉर्डियल फ्रेंडशिप इवन आफ्टर एंडिंग देयर रोमांस relationship. You know, despite the emotional distance that developed between them, Danny never publicly spoke against Parveen. When the veteran actress passed away in 2005, Danny was among a few people from the film industry who attended her funeral, a gesture that reflected the respect and affection he continued to hold for someone who had once been an important part of his life. The story remains one of Bollywood's most memorable relationships, remembered not only for its glamour, but also for the heartbreaking circumstances that eventually drove the two apart. See, इतना सेंसिबल तो होना ही चाहिए इंसान को, है ना.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

सलमान मूवी का ट्रेलर देखा, एवरीबडी हैज देयर ओपिनियन एंड दे आर रेडी विद देयर वर्ड्स, लेकिन कई ग्रुप, बहुत मेजर बड़ा ग्रुप ये कह रहा था कि कॉस्ट्यूम डिजाइन जो है वो अच्छा नहीं है, काफी मॉडर्नाइज किया गया है और ये सब उस वक्त को नहीं दिखाता। तो फाइनली अब उस डिजाइनर ने भी जवाब दिया है, रिस्पॉन्ड किया है, डिबेट अराउंड द फिल्म्स लुक, लेट्स नो व्हाट शी हैज टू से। This is Bollywood Bliss with me, Bharti, on your tune frequency, Naira. And ever since the first glimpse of Ramayan dropped, the film's costume have become a talking point. Social media has been abuzz with debates over its modern styling, with many questioning why Sita is seen wearing blouse, unlike traditional depiction of mythological characters. And then costume designer Rimpal and Harpreet Narula, known for their works in the films such as Padmavat, Heera Mandi, The Diamond Bazaar, aren't surprised with the scrutiny and said, "We knew conversations and comparisons were inevitable." Says Rimpal, adding, "An epic like Ramayan has lived in our collective consciousness for generations. There will always be opinions about the casting, costumes, visual effects, and what people believe is right or wrong. We are prepared for that. What has kept us grounded is our honesty towards our craft." Addressing the biggest criticism, Sita's blouse, Rimpal says, "When I close my eyes and think of goddess Sita, I don't think about archaeological authenticity. I wanted my goddess, the one sitting in my mandir, to look like the image that has lived in my consciousness. That was a deliberate choice. I think we should go with their choices, क्योंकि यार एक फिल्म बनाई है, वो पूरी पूरी असल चीज तो आपको नहीं दिखा सकते, ये तो सीधी बात है, लाइक इट्स ऑल अडेप्टेशन एंड थिंग, दे आर ट्राइंग टू टेल द स्टोरीज, दे आर ट्राइंग टू इंस्पायर पीपल, दैट्स इट, एंड वी शुड टेक इट ऑल इन अ पॉजिटिव वे, क्रिटिसाइज करो बट इन अ गुड वे। वेल, इन दिस नोट आई एम साइनिंग अप फ्रॉम द शो, अगली बार आपसे मिलूं, टिल देन टेक केयर ऑफ योर लवली सेल्फ, मेरे पास सुनिए अमेजिंग शोज एंड सॉन्ग्स।

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

0: शायद तू क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोक।

0: बजेगा सिर्फ बेस्ट हिट्स।
1: 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? मूवी देखी थी, पाव भाजी खाई थी, पंजी गए थे।
2: रॉन्ग। 2 अक्टूबर को गरबा नाइट है। अरे भूली गया, आ डेट तो याद रखवानी छोए। गरबा लवर्स, आर यू रेडी? ऑन अक्टूबर बीजी रिधम अने रास लेने आवे छे गरबा नाइट। चनिया चोड़ी अने केडियो रेडी राखो। एपेक्स मा थवानी छे फुल ऑन गरबानी धमाल। जॉइन अस फ्राइडे ऑक्टोबर 2nd एट 7 PM एट हवेली एपेक्स। डांस टू द इनक्रेडिबल बीट्स ऑफ अमृता मंके एंड निमेश नगर विद लाइव म्यूजिक, डिलिशियस फूड, फैमिली, फ्रेंड्स एंड रात भर गरबानी मौज। अर्ली बर्ड टिकट्स ओनली अंटिल सितंबर 7।
1: टिकट्स ऑन सुलेखा और चेक द रिदम एंड रास फ्लायर ऑन रेडियो नायरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और रेडियो नायरा .com। वन बीट, वन सर्कल, वन कम्युनिटी।
3: At Triangles Biryani in Morrisville, we are elevating the art of biryani with unmatched quality and flavor. From the finest hand-picked spices to the freshest vegetables and premium meats, every dish is a masterpiece. Don't miss our signature Kukur Pulav, a culinary delight available with chicken, goat, paneer, shrimp or fresh vegetables. It's fresh, flavorful and exclusive to the East Coast. Start your feast with sizzling appetizers, perfectly paired with your favorite hot drinks. Indulge in our weekday unlimited thali, a bountiful spread available in vegetarian and non-vegetarian options. Unwind with our signature cocktails like Pushpa the Fire, Classic Margarita, Old Fashioned, Negroni or Jungle Bird. Visit us today at 4121 Davis Drive, Morrisville or call 919-377-1029. Triangles Biryani. Fresh, flavorful,
4: shopping for your next car? LeafCars.com puts everything in one place so you can search, compare, and buy with confidence. Choose from thousands of new and used vehicles backed by our trusted network of local dealerships with expert service, convenient locations, and flexible buying options. LeafCars.com makes the entire process simple. Start online and drive home with peace of mind. LeafCars.com.
5: Radio Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM. Pakka Desi, Pakka Local.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोक।

0: नए साल की शुरुआत सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स के साथ। ट्यून इन टू रेडियो नायरा 2025 की परफेक्ट शुरुआत।
1: नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।
1: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स।
2: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा,
1: एंजॉय फ्रेश सिजलिंग वेज एंड नॉन वेज स्टार्टर्स पेयर्ड परफेक्टली विद ओवन फ्रेश चूर चूर नान मेड विद लव एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स।
2: प्लानिंग योर बर्थडे, वेडिंग, ग्रेजुएशन पार्टी, कॉर्पोरेट गैदरिंग और फैमिली सेलिब्रेशन?
1: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
2: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
1: Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट साइंड। मैं हूँ सबके दिलों का चिराग, मेरा नाम है आरजे पराग। 7 से 10 में रहता हूँ आपके साथ, मिटाता हूँ आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूँ आपके मूड को रिफ्रेश। वेल, हर तरफ चारों दिशाओं में, हर दिशा में बस एक ही नाम गूंज रहा है और वो है गणपति बापा मोरया। इतना मौसम जो है वो सुहाना हो रखा है बापा जब से आए, और वाकई में मौसम एक्चुअल में सुहाना हो रखा है। ठंडी हवाएं भी चल रही है। वेल, कैसे चल रहे है आपकी आज की ये शाम? एंड 7 से 10 हमारा ये शो चलता है जिसका नाम है निर्वाणा नाइट्स। और कल से बाबा का जो आगमन हुआ है और वातावरण में जिस तरह से पॉजिटिविटी छाई है वो काफ़ी अलग लेवल की है। एंड एंजॉय करते हैं पहला ये गाना, एंड बने रहिएगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: एंजॉय किया आपने गाना। गाना था वाकई में काफी बेहतरीन। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, एंड अब शुरुआत करते हैं लोकल खबरों से। तो पहली खबर यह है कि कल मॉरिसविल और कैरी इलाके में एक बहुत बड़ी 30 इंच की पानी की मेन पाइपलाइन फट गई थी। इस वजह से करीब 50,000 ग्राहकों के घरों में पानी की दिक्कत देखी गई और लोगों को बोतल बंद पानी खरीदना पड़ा। प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई थी कि सोमवार को कैरी के कई स्कूलों को समय से पहले ही बंद करना पड़ा। एंड खबरों के मुताबिक आज मंगलवार को मरम्मत का काम काफ़ी हद तक पूरा कर लिया है और सभी प्रभावित स्कूल आज से अपने नॉर्मल स्केड्यूल पर वापस लौट आए हैं। मतलब ये दिक्कतें होती रहती हैं। फिलहाल एंजॉय करते हैं अगला ही गाना।
1: मेरा बाबा बा, बा, बा, मेरा बाबा बा, बा, बा, मेरा बाबा

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरापन रिवदा नाइट्स। मतलब ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो होती रहती है अक्सर, इसके लिए क्या प्रिकॉशन लेंगे, लेकिन कुछ परमानेंट समाधान पाइपलाइन फूटने का मिलता है तो ये काफ़ी अच्छी बात कहलाएगी। एंड अगली न्यूज़ है जिसके बारे में हम तो बहुत बार बात कर चुके हैं। इस वीकेंड के दौरान मैंने 60 कहा था, लेकिन कुल मिलाकर रिपोर्ट के अनुसार चोरों ने अलग अलग होटल और अपार्टमेंट से बाहर खड़ी करीब 80 गाड़ियों के शीशे तोड़कर चोरी के वारदात को अंजाम दिया है। इट्स नॉट 60, इट्स 80। पुलिस का कहना है कि चोरों ने गाड़ियों से कम 2 बंदूकी चुरा लिए और मामले की जांच जो है वो जारी करी है। तो ये ऐसी चीज़ है, मतलब बियर ग्रीक की ये घटना मैंने आपको बताई। मैं यही कह रहा हूँ कि आजकल तो ऐसा लग रहा है कि व्हीकल परचेस करना ही एक खतरा है ना। एंजॉय करते हैं अगला ही गाना।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड रैली के पैंटेलटन लेक इलाके से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां वेक काउंटी शेरिफ दफ्तर ने एक 66 इयर्स ओल्ड महिला ने जो है वो पशुओं के साथ बड़ी क्रूरता से पेश आई है। पशु क्रूरता के आरोप में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। महिला के घर से 3 कुत्ते मृत पाए गए, जबकि 2 अन्य कुत्तों और 3 बिल्लियों को गंभीर हालत में वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है। आरोपी महिला को आज काउंटी कोर्ट में जो है वो पेश किया जा सकता है। मैं हमेशा से ही एक चीज़ कहता हूँ कि पेट अगर पालना है आपको, अच्छे से रखना है तो ही रखिए, वरना पेट कोई खेलने की चीज़ नहीं है। उनको भी इमोशंस रहते हैं एंड अटैच्ड वो भी हो जाते हैं। दैट्स व्हाई पालना है तो अच्छे से पालो, वरना मत पालो।

अब सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड कलाकारों का मेला। जी हाँ, रैली के डाउनटाउन में इस हफ्ते साकॉन फेस्टिवल की शुरुआत जो है वो शुरू होने जा रही है। मुफ्त एंट्री। इस फेस्टिवल में 2000 से ज़्यादा लोकल कलाकार जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड क्या खास रहेगा, तो जिसमें रहने वाला है म्यूज़िक, डांस, शानदार पेंटिंग्स और डिलीशियस स्ट्रीट फूड का मज़ा आप आपके परिवार के साथ बिल्कुल मुफ्त में यहाँ पे ले सकते हैं। रैली में सार्क आर्ट फेस्टिवल की धूम चल रही है और ये बहुत ही अच्छा फेस्टिवल रहता है। तो आप अगर यहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं, कुछ आपको नया देखने का मन कर रहा है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे जा सकते हैं। एंजॉय करते हैं अगला ही गाना, बने रहिएगा रेडियो नायरा पर।